0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिंग दे प्रेम 95 मेगाहर्ज
3: Wherever you are, stay connected. Wherever you are, stay connected with the wider world. Wherever you are, stay connected. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: भुलास जल भलुम तिनु गुनला न दुला
2: नेपाल ऋण खप्पै बिमगाछ क्याल्भोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटे सादा थिन रंगीन जस्ता पाता हुलास जुरा कलर छन बन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला
1: तीन गुना लाना टुला
2: हुलास मुसम अर्कु तिल दमाइसे
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: तू गाती है?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा को ठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना।
0: तेरी बात।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: है नहीं खुशी क्या खाना हो आजकल तो जाने ही फुर्तीले र स्वस्थ देख सुता
3: खाने तो खास से क्या ही होइना दीदी लमजुंग एग्रोबी कंसन द्वारा उत्पादित शुद्ध लमजुंग महा बिहान बेलुका दैनिक एक एक चम्चा खाने का रिकॉर्ड
2: अनि महा साय शुद्ध र ऑर्गेनिक नहीं होला र
3: हो नहीं दीदी लमजुंग महा त 1350 मीटर उचाईमा आफ्नै फर्ममा जंगली स्रोतबाट उत्पादित कार्तिकीय ऑर्गेनिक महा हो
2: महा बाहेक अरु के पाइन्छ त्यहाँ
3: त्यहाँ त

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी